0: समाधि करेगा रो
1: तब आपने खुला खुला करो समाधान लाख ऊपर आ जाएगा
0: लाख ऊपर आ जाएगा तारा बसो स्वस्थ रहो उजालो भविष्य बसो
2: रेडियो गुरुवार कृष्ण द्वारा संगीत मजारी संदेश

0: किन्न छन्। प्रशोधित तथा तयारीखाना जंक फूड तथा डिब्बा का खाना में सोडियम धेरै हुने हुँदा मुटु रोग को जोखिम बढ़ाने गर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एउटा व्यक्ति ने दैनिक 5 ग्राम सम्म नुन सेवन गर्नु उपयुक्त हुने सलाह दिएको छ।
1: नियमित रूप में हेतु शारीरिक व्यायाम ने मुटु स्वस्थ बनाउन मदद गर्छ।
0: सन्तुलित भोजन, पर्याप्त निन्द्रा, सकारात्मक सोच एवं चिन्ता र तनावबाट मुक्त रहँदा मुटु रोगबाट बच्न सकिन्छ।
1: 40 वर्ष कटेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौं।
0: चिल्लो पदार्थ, माछा मासु कम खाऊ। खानामा शाखा र फल फुल खाऊ।
1: मद्यपान र धूमपान सेवन नगरौं।
0: स्वस्थ रहौं। सुखमय जीवन बिताउँ।
2: रेडियो गुरुबाबा
3: जो कोई यहाँ रास्ता यहाँ सूचित रास्ता नहीं है।

0: सुरक्षित परिवार। रेडियो गुणवत्ता एफएम द्वारा सुरक्षित बजाय की संदेश
1: सबूत तो पूरा तब के लिए चिंता नहीं।

0: बारे शुरू गरी अन्न केराबुली साग सब्जी फलफूल सहित पोषण पूरक खानाले बच्चा खाना तन्दुरुस्त बनाए। पूरक खाना सँगसँग 2 वर्षसम्म स्तर कारण जारी गरे।
1: रेडियो गुरुबाबा एफएम द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: घरमै बनेको पोषक कुरा खाना 6 महिनापछि अनि बारे सुरु गराउनु। अन्न केराकुली साग सब्जी फलफुल सहितको पोषक कुरा खानाले बच्चालाई तन्दुरुस्त बनाउँछ। पूरक खाना सँगसँगै 2 वर्षसम्म स्तनपान जारी राखौँ।
1: रेडियो गुरुबाबा एफएम द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
0: रेडियो गुरुबाबा एफएम 99.4

0: ఇక బాబా సైడ్ అంపరేటర్ కు బాబా మోసం లేటి మోసాట కాయి పెట్ సౌకరి మోసం తో విపత్ ప్రభావం సమయం మా ప్రాప్త మైకల కాసెట్ ప్రభావం కొనసే చేసి విపత్ కొసే గుణా మానకి తదా భౌతి చేతి యూని కార్డ్ కొన సిగ్నల్ నిపర్వా ప్రభావం గుణాన్ హాస్య కల్ పాచం దొచిన లో బస్తే తా సంతే కొన సమయం మోసుచనా దినా సురక్షిత అవసరం ఆవశ్యక సమయం తయారీ వ్యవస్థాపన తరుణ తథా ఉద్యాన తథా పూర్తి కార్యకలాప తయారీ కరణ ఉపలక్ష్య విపత్ కు సమయ మహిళాశీకి గొప్పరసిక సురకార వరంక పట్టుదాత శని ఇక విషయమ ఏక సామగ్రి
1: నమస్కారం
0: రాజు కే తో తపైకు గాల్ పాలి కే తీరు కో ఖబర్
1: तपाईँको पालिकाको खबर बुझ्न आएको यो यति ठुलो वर्षा हुँदा पनि तपाईँको पालिकामा त्यति क्षति भएन होइन के जादु गर्नुभयो
0: अब के जादु भन्नु ठुलो तारिक पर्दैछ भन्ने थाहा पाएपछि हामीले पूर्व अनुमानमा आधारित कार्यविधि अनुसार जोखिम घटाउन बेलैमा तयारी गर्यो यसलाई पूर्व अनुमानमा आधारित पूर्वकारै भनिएको रहेछ यसकारण त्यति नोक्सानी हुन पाएन
1: जतना मौसम विज्ञान विभागले ठुलो पानी पर्दैछ है भनेर दिएको सूचना त हामीले पनि तिन दिन अगाडि नै पाएका थियौँ नि
0: हो त्यो सूचनालाई हामीले सबैले बुझ्ने गरी सबैतिर फैलायौँ हाम्रो जनप्रतिनिधि वर्गर स्वयंसेवक लगायत सबैले खबर गर्नुभयो
1: होइन खबर गरेकै कारण वर्षाले असर नगरेको हो त
0: त्यति मात्र होइन धेरै ठुलो पानी पर्ने सूचना दिएपछि हामीले धेरैमा पूर्व कार्य गर्न पर्यो र सकेको सहयोग पनि गर्यो जस्तै पानीको हिटाउने पानीको छैन भने दुई चार दिन नकाट्ने ठुलो नगर पनि सफा गर्यो अनि बाढी आइरहने र डुबान भइरहने ठाउँका गाउँलेहरूलाई कहिले नै पहिचान गरेको सुरक्षित स्तरमा लगेर
1: राख्यो
0: ल सुन्नुहोस् हामीले पालिकाको कहाँ कहाँ बढी जोखिम छ भन्ने विवरण पहिले नै राखेका थियौँ बालबालिका वृद्ध वृद्धा गर्भवती तथा सुत्केरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतका जोखिम समूहको पनि पहिचान गरेका थियौँ बेला बेलामा तटबन्धहरूको नियमित चेकजाँच गरी मद्दत पनि गर्दै आएका छौँ आफ्नो पहिचानको लागि सुरक्षित आश्रय स्तर पनि बनाएका छौँ साथै यस्तो बेलामा कसले के काम गर्ने भनेर कामको पहिले नै बारबार गरेका थियौ त्यसै गरी आपत परिचालन गर्ने निकाय र संस्थाहरूसँग पनि पहिले नै समन्वय गरेका थियौ अत्यधिक पानी पर्न थालेपछि हाम्रो जलमापन केन्द्र र गेज डिलरहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर नदीको अवस्था बुझ्छौ जल तथा मौसम विज्ञान विभागको टोल फ्री नम्बर 1157 फोन गरी मौसम तथा बाढीको जानकारी लिइरहन्छ विभागको वेबसाइट मार्फत वर्षा र जलसम्पको नियमित अनुगमन गरिरहन्छ विभागले बाढी वर्षाको लागेको सूचना दिएमा वा हाम्रो स्थानीय नदीले सतर्कता लागेमा सर्वप्रथम जोखिममा रहेका गर्भवती सुत्केरी ज्येष्ठ नागरिक बाल बालिका अपाङ्गता भएकाहरूसँगै महत्वपूर्ण सामग्रीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा लैजान्छौ
1: अनि अत्याधिक पानी परेर बाढी आउन लागि के गर्नुहुन्छ त
0: हो नदीले सर्वप्रथम हाम्रो समुदायमा रहेका सबैलाई सुरक्षित सहयोग गर्छौ जोखिमको अवस्था हेरेर अरू प्रतिकारका कामहरू पनि गर्छौ साथै सबै कामहरू राम्ररी भए नभएको हाम्रो व्यवस्थापन समितिले नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समेत गर्छ
1: अब हामी पनि हाम्रो गाउँपालिकामा यस्तै गरी पूर्वानुमानमा आधारित पूर्व कार्य गर्छौँ
0: पूर्व सूचना अलाम व्यवस्था निकायका वाकर आधारमा पूर्व कार्य गरिसकेपछि सम्भावित विपदमध्ये जोडन जोगाइसक्दा उहाँहरूको कार्यभारका लागि स्थानीय तह सुरक्षा निकाय समुदाय तथा सर्वसाधारणबीच समन्वय आवश्यक र रचना विभाग पूर्वानुमान हुन केवल सूचना किरण हो जोखिम न्यूनीकरणको लागि तत्काल कदम आग बढेन आधारका रूपले पर्न जोड्दै गर्वा
2: Thank you.
0: मौसम बुलेटिन ताल सन्ध्या ठिक पाँच बजी प्रदेश गुरुबाबा मौसम बुलेटिन यात्रा नेतुबाटी तबसम्म प्राध्यक्ष निर्या पौडी शङ्कर अमरिन्द्र भेटिया भेटौँ जय गुरुबाबा।

0: रेडियो हो, रेडियो गुरुबाबा एफएम 89.7 मेगाहर्ट्ज।
1: रामो दाजु, पावर टिलर लेने कहाँ खोज्छ जी?
2: कहाँ रही भाई, ये पावर टिलर बनेगा रहा, वो बनेगा दुकान खोजे ड्रोन, अब तक का रहा, कहाँ का मिला पशुपति का सरकार?
1: वो दुकान था, मेरे दाजु, मैं ये सरकारी पक्षी पालन प्रांत का बना वोट के सोचे उत्तर उसका होगा मुझे नहीं दाजु।
2: हजुर आपने ऊपर एक चीज सीखे कला उसका मान लिया चाहती अब वर्ल्ड कप का पास और हिमाचल पशुपति नाम सप्लाई में इंडिया इटालियन खान कटनाई पर साइंस और इंडियन इंजीनियर कंबाइन मिल राइस मिल चारा मिशन हार्वेस्टर साफ्टवेयर लगाए पशुपति से बताना बनाना प्लेट मिशन क्रिया के संसद खेती किसान करना सब मेरे समान उपलब्ध था उसे सब मेरे कृषि का मिशन खेती से सुधार बना जाए खबर कर से खराब संबंधी पूर्ण समाज की सभी यदि चाहती करते सांसद पांच सौ का वाला पशु के नाम सुनना
1: अठानबे पांच अस्सी पच्चीस शून्य चौदह हो अठानबे दुई चौबीस शून्य छब्बीस अस्सी
2: नवजीवन सरकारी संस्था का पक्ष खुराक फसल संस्था जानकारी कराई थी।

0: usahakan akun cara kita itu kerana itu mengambil sama sebab itu juga kecuali ada arti bersulat buku yang mana benar semacam di cerpen dan arti pada sana pada jangka dia mesti kau dapat.
1: प्रणाली माध्यम से प्रणाली प्रोग्राम परीक्षण परिचालन और त्याग राजा पूर्ण दफ्तारी का एक हिमालय पुल का चार खाट काम प्रभात घर दुकान में प्रभात घर सुना सुना हूँ घर सुना हाँ छेतवा सुना हो राजेंद्र सुना हाँ का परिवार हना घर सुरक्षित हम सार के लकुड़ा तो से बाप नाम जो थे जान घर के बाट कर नाली जो इस पर बहुत की गेता पुरुषे तके क्षेत्र को लोग परिवार में समय सोचित करा गेता चलों का मार्ग दिया कथा इतना वो जो इस पर आखिर पुरुषे करा उधर पुरुषे सजल बड़ा परिया परिया जो कि लोग स्थानीय संगठन को परिवार राजा पुरे का दुनिया लगाई तो करना ही तके क्षेत्र में पे महिला का उच्च जोखिम आता आजक नगर पालिका चार दौड़ा था से पितृ पोखरे अनुसार दौलत क्रमक पर लक्ष्मी उल्टे से दक्षिण और मध्य कटान पीति दरबार उस ठाम तटबंध निर्माण अथवा अनुभव से जोखिम बहुत महत्वपूर्ण सिंचाई तथा सर स्रोत आयोजना कार्यालय राजकपुर के इंजीनियर नवीन जोशी के अनुसार सोमवार यहाँ सम प्रणाली दस पाँच मीटर पानी का बहाव रहा पानी से जल स्तर बहुत गिर को 10 मीटर से ऊपर पुग्न से राजपुर नगर पालिका का छात्र क्षेत्र दुकान में पड़ना जोखिम का आयोजना प्रमुख सुधीर मुक्ता के अनुसार कर्णाली का जल स्तर बहुत ही भलाली खुलवामा पर से दुकान पड़ना कर्णाली मुख्य वाले ग्राम का

0: चौकी गणेशपुर पवाई चौकी शीतला मल्ला तथा सीमा सुरक्षा चौकी पीओपी लौकाही का स्थापक निरीक्षण करने निरीक्षण का क्रम में संबंधित सुरक्षा अधिकारी मंत्री शांति सुरक्षा सीमा अपराध नियंत्रण तथा समग्र सुरक्षा अवस्था बारे जानकारी ले जिला व अवस्था में प्रमुख जिला अधिकारी हमारे संबंधित सुरक्षा निकाय का प्रमुख तथा सुरक्षा कर्मी शांति सुरक्षा सुदृढ़ बनाने सीमा क्षेत्र में होना अवैध गतिविधि तथा सीमा अपराध नियंत्रण का सुरक्षा निगरानी में प्रभावकारी बनाई निर्देश संघ नागरिक का सुरक्षा प्रति संवेदनशील होकर जिम्मेवारी निर्वाह कर समेत अनुक्रमण में पूरी सीमा क्षेत्र तथा उच्च क्षेत्र में कार्य शांति स्थापना केन्द्र का समेत निरीक्षण का क्रम में सीमा क्षेत्र का वर्तमान अवस्था नागरिक का आवश्यक सुरक्षा चुनौती तथा सीमा अपराध का संभावित जोखिम का विषय में जानकारी जिला सीमा क्षेत्र में विशेष चोरी तस्करी अवैध आवत जावत लगायत का गतिविधि पर निरंतर निगरानी थाना तथा संबंधित सुरक्षा निकाय बीच आपसी संबंध और सूचना आदान प्रदान में प्रभावकारी बनाए पढ़ना समेत जोर दे स्थलगत अनुगमन में से सीमा क्षेत्र पर खर्च सुरक्षा निकाय का कार्य संपादन सुरक्षा अवस्था तथा संभावित चुनौती बारे प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करता यही शांति सुरक्षा सुदृढ़ बनाने संग सीमा अपराध नियंत्रण का आवश्यक समय हो सुरक्षा रणनीति थप प्रभावकारी बनाई सकते बिना विश्वास कर जिला प्रशासन कार्य पर दिए जाने वाले बाकी का प्रस्ताव कारागार शाखा ने बालगंज कैदी बंदी फूटे को सीधा महिला किसान प्रस्तावों से प्रभावित प्रवृत्ता तथा राहत का राज्य सहयोग कारागार शाखा ने बालगंज कैदी बंदी बहिर्कृत करा 1,02,626 रूपये आर्थिक सहयोग उसी का कारागार कार्यालय अवस्था का भी तुरंत मामला कैदी बंदी का स्वैच्छिक रूप में रकम संकलन करेगा 50,510 प्रधानमंत्री दैनिक तपो को दार को जमा कर कार्यालय प्रमुख दल बहादुर बस्ने जानकारी दल राष्ट्रीय समाचार का पारे बिंदु से
1: राजनीतिक दल द्वारा गलत ढंग ने व्याख्या करते रहना आरोप लगाई इतिहास बदलना प्रयास देकर चेतावनी दिनबाट जयंती सहित दिवस के अवसर में जयंती सहित का कल्याणकारी समाज से आयोजना अलग कार्यक्रम गृहमंत्री गुरू जयंती आंदोलन नेपाल का ऐतिहासिक आंदोलन गलत दावी कर दी यहां पर अब व्याख्या करना छोड़ती हूं फिर गठबंधन आंदोलन में अपमान करना 3 करोड़ नेपाली जनता का अपमान करना राजनीतिक दल का नेताहुंकन शासक को कार्यशैली परिवर्तन कर अर्जीकरण करो इतिहास बदलने कोशिश नहीं करो आपको समय में सुझो समारोह सुझाव दे रहा जिला मंत्री गुरु जयंती आंदोलन सत्ता को शक्ति का लोक में यहां पर सुशासन के पक्ष में युवाओं का सड़क आयोजित आंदोलन विधक बटेट वहां अनुसार भदौ को शांतिपूर्ण आंदोलन पर दमन हो गुण प्रहार विचार सभा 24 बजे को घटना हो जो 24 बजे जनस्तर चल रहा दिन का रूप देना सरकार प्रचार बैठी रहना कहते वहां भर 23 बजे देश मूलक परम्परागत कार्यशैली नेपाल निर्माण विषयमा घटेकी जयन्ती आन्दोलन नकारात्मक बनेर मेरो देश चलेर फाँसे जब

0: radio Corbara FM Duala, Sani Mazari Sante.
1: तिम्रो प्रश्न तिम्रो भावना अनि

0: इंटरेक्शन को सहयोग में रेडियो जुनताला र रेडियो उम्मीदवार को प्रस्तुति
1: सँगसँगै दुई वर्षसम्म यसको

一个人没从这个什么农村的那个很不用说的那个富的那个那家里也不认识所以他们就发出去不是说的那个问题存在的那个我来不得了我告诉他们那么晚存在的那个在这里我儿子的人是可能是不理解那么弟弟我给你发出去那个事都是的不要点他的来的那么就不要定存在都赶紧在这说आखिर गुरु जी ने सिद्धा जी के साथ आओ बाकी पता किसान छोटे लग गए सिद्धा जी की तरह अब सब कुछ लगे पानी तो यहाँ पर निकाल के भाव से सुनते ही तो नहीं पाएगा

कर देंगे क्या रही भाई एक पावर तुम्हें बनेगा रहा वो बनेगा जो काम कर तुम आत्मा कर रहा कहा करेगी ना तो तुम तेरा सब गैस वो तो कर मुझे नहीं कर नवजीवन सरकारी पच्चीस कर सोचे उत्तर

0: कहाँ रही भाई ये पार्टी अपने यहाँ वो अपने यहाँ दुकान से घूम अच्छा कर रहा क्या कर गया पसंद सप्लास
1: ये दुकान था ये भी था सर नवजीव सरकारी पच्चीस पाजर थोड़ा दुकान रहा रोड के इसको जी उत्तर उत्तर हुआ ये भी था
2: अजूर आपने बढ़ने की शिक्षा की कला उसका माध्यम है साथी अब बढ़ने का पास बने रहा उसको तीनों सप्लास में इंडियन इटालियन खान पटनारी पर राइटो इंडियन मिनिटरल कंबाइन मिल राइस मिल सारा मशीन आर्केस्ट्रा सारा फोटो जो है उसको पासी में दारा बने रहा प्लेट मशीन प्रिया का संसद खेती किसानी करना सब कुछ एक समान प्राप्त हुआ उसे एक बात बिगड़ सब कुछ एक कृषि का मशीन के पीछे एक सुख मापन आ जाए खबर को लगे खबर आ सकते हो तुम्हारे साथ